Pina is to bawa talu tezang gaspas onse darung ata dasa agase during 29 halale agas 29 supai kangri ulus tenok kali tengata juce jua mina puru kangri chas teni doro yumso kil jung do tarkid vilchung chas teni ikdang ngai azuk gali teni kangri u kitana i kangri u te phantok dukle kawa acho kangri chinmola teni i wai kangri chunbe teni phantok kawa speed line na कांग्रेस वैज्ञानिक पातो दुगले कि युल्लंग दुल्ला चंगमा ने दुल्ला चोसका निजास दे गोस्पा पीते ट्राई में का जुस्ते होंगे क्या कले तने आ कांग्रेस जिनमो हो तने यार स्किल ला जुस्ते होंगे क्या ले तने आ कांग्रेस वाट्रोट को गुवाई हो के तने तुल्ला बांजी जुस्त सर्वाजितं यू इम्मा सपोर्ट संचित हो तो कले गवां

Dinais tu ba talo te zang gas pa song se darung ata dasa aga se dring 29 halale agas 29 supai kangri ulus te nokane tenga ta juche jua mina puru kangri cha teni dor yum so khil jung do tarki dil chung cha se ek dang ngai azu gyane teni kangri o ketana I kangri o te phantok dukle ka wa cho kangri chinmo la teni I we kangri chun de teni phantok ka o speed line na कांग्रेस वैसा भातो तो लेकी यूँ लंग दून ला चंगा उन्हें दून ला चुस्का निजास दे गोस्पा पीते ट्राई में का जुस्ते उन लोग याकले तेरे आ कांग्रेस जिनमें हो तेरे यार स्किल ला जुस्ते उन लोग याले तेरे आ कांग्रेस वाट्रोट कुकुआई हो के तेरे नंग दून ला बांझ